0: आएको पैसा सिधै खल्ती वालेटमा।
1: नेपालको कुनै पनि बैंक खातामा वा 45,000 भन्दा बढी आईएमई काउन्टर मार्फत
0: आफन्तको हात हातमा पुर्याउन आईएमई गरौं।
1: 25 वर्ष
2: बैंकिङ खैमत बिले क्यों दे एटीएम मोबाइल दे इंटरनेट बैंकिंग के गोपे विवरण आरी खाई बिले तो ही माध्यम क्या रे न्यो दे प्रे छली जानकारी री विषया न्यो कॉल पर दिमो समय न्यो ठग दिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो दे प्रे विवरण री विषया बैंक दे नील पर दिमो न्यो ताने सतर्क ताना ठग दिल क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्या ले जन हितरी जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरी लाई
4: समूलिया FM 94.2 समुदाय को आवाज।

WorldLingo festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps internet और net TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set-top box मात्र ₹12 प्रति महीना में. शर्तहरू लागू होने चाहिए. छिटो बने गई WorldLingo.

क्यों घास वन में आगो लगो भनी जीव जंतु को नाश वन में आगो लगो भनी वन जंगल खाँच वन में हुनी जीव जंतु ने सारे पीर मंस फागुन देखि जेठसम आगो लगने डर आप

0: Willingo festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps international net TV साथ में dual band router, Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV sets of box. मात्र रूप 1200 प्रति महीना में. सर्थरु लागू होने चं. छिटो बने गई Willing.
1: दमोली FM 94.2 समुदाय को आवाज.
2: मेसना डिजिटल प्रस्तुत गर्दछ.

क्यों घास वन में आगो लगो जीव जंतु को नाश वन में आगो लगो वन जंगल खाँच वन में हुनी जीव जंतु ने साह पीरा म फागुन देखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर आफ्नो

शानो उदासी को सा जिंदगी रउजाड़ी का सन मेरा मन का रहर हर तिमी संग को बिछोड़ मा टोकरी को ये मोटो तिम्रो जजर को लियो छाती चर्खी को मेरो साथ पाउँदा संसार पाए जाई गर्ने तिमी कति रन्छ होला मेरो यादमा कति रन्छ होला मेरो सम्झनामा कुरे है माया कुरे आउने छु म छिट्टै फर्केर

आरबीटी महिला 60 54 28 98 पुरुष 60 54 28 99 स्वर रामजी खाड सूर्य प्रसाद भट्टराई पूर्ण कलाबिसी लय होमनाथ कुंवर शब्द उमेश कुंवर विशेष सलाहकार सुमधुर स्वर का धनी गुलमेली ध्रुव कुंवर

0: किशोर पवन परियार र पूर्णकला विशेष शब्द किशन विशेष लय किशन विशेष र प्रीतम बिक पीआर बेटी 6054 1134
1: अरेन्जर यमन खनाल
0: उत्पादक तथा वितरक सुपा देउराली म्युजिक प्राली काठमाडौँ प्रबन्धक यमन खनाल 9894904000